Sat Sri Akal, Namaste. Welcome back to Namaste Southland on Radio Southland 96.4 FM. KV experience chahiye aapko? Today's show is all about job struggles and first job stories of immigrants in New Zealand. Aaj ka topic, jaise ki maine kaha, it's all about first jobs in New Zealand, jo ki har migrant ke dil ke bahut kareeb hai. NZ mein pehli job. Agar aap immigrant ho, to aapne definitely ye line suni hogi. Sorry, you don't have New Zealand experience. Matlab, bhai, एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और आप मुझे बताओ आपने इंडिया में कितने सर्कुलर पिज़्ज़े बनाए थे या फिर क्या रिटेल एक्सपीरियंस था आपका इंडिया में. आपको फर्स्ट जॉब लेने में कितना टाइम लगा इस कंट्री में, एक हफ्ता, एक महीना, छः महीना या अभी भी आप लिंक्डइन रिफ्रेश कर रहे हो. इंडिया में कभी आपने रिज्यूमे बनाया था या फिर आप सीधा 12th के बाद यहाँ आ गए. अगर आपने कभी रिज्यूमे बनाया हो इंडिया में तो आपको पता होगा कि कम से कम 4 पेज के नीचे आप रिज्यूमे नहीं बना सकते. जस्ट टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल इज, आप स्कूल कैप्टन थे, आप डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए थे, आप ब्लड डोनेशन करते हो, आप वॉलंटरी सर्विसेज करते हो, आप हार्ड वर्किंग हो और सिंसियर हो. बट न्यूजीलैंड में यू हैव टू कीप इट अंडर 2 पेजेस to make it more polished and professional. यहाँ पर आने के बाद migrants हर जगह apply करते हैं just to get a foot in the door. Accountants apply for retail and food joints, engineers apply for warehouses, doctors are being interviewed for taxi drivers, and qualified MBAs are learning to make coffee. Or wait game. When you're waiting for the first job to आंसर यू बैक, आप हर 10 मिनट में अपना ईमेल रिफ्रेश करते हो, फोन उठा के मैसेजेस चेक करते हो और जस्ट इन केस आपको कोई स्पैम कॉल आ जाए एंड यू आपकी मायूसी आपकी सारी उम्मीदें तोड़ देती है. यू आर लिसनिंग टू रविया ऑन रेडियो साउथलैंड 96.4 FM एंड शो इज नमस्ते साउथलैंड.

हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं एक्सेंट समझने की स्ट्रगल को और ऑफिस में काम करने के कल्चरल शॉक को. एक्सेंट से शुरू करते हैं. मैं इंग्लिश पढ़ाती थी SSB के स्टूडेंट्स को एंड आई यूज टू टेक देयर क्लासेस एंड गिव देम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्वालिफाई SSB फॉर इंग्लिश इंटरव्यूज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस. और मुझे न्यूजीलैंड में इंग्लिश एक्सेंट समझने में आई एम टेलिंग यू लिटरली 1.5 साल लग गया. इंग्लिश समझ में आती थी पर कैजुअल कॉन्वर्जेशन में कोई क्या बोल जाता था अपनी स्लैंग लैंग्वेज में वो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाता था. बट एनी हाउ आई गॉट देयर. आप मुझे बताओ कि आपको एक्सेंट स्ट्रगल हुई और कितना टाइम लगा आपको एक्सेंट समझने में. और क्योंकि हम साउथलैंड के लिए शो कर रहे हैं मुझे पता है कि नॉर्थलैंड और साउथलैंड में एक्सेंट का बहुत फर्क है. साउथलैंड का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है एंड वी टेंड टू रोल आवर आर्स. हाउ आर यू. इट्स नॉट हाउ आर यू, इट्स हाउ आर यू. अब बात करते हैं वर्किंग कल्चर के डिफरेंस की. अगर आपने इंडिया में काम किया है आपको पता है कि क्या वर्किंग स्टाइल होता है. और यहाँ पर इट इज़ वेरी कंपैरेटिवली लेड बैक एंड रिलैक्स्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉफ़ी कल्चर शॉक. इंडिया में आपका बॉस आपको कॉफ़ी पिलाता है तब पिलाता है जब उसने आपसे कोई फेवर लेना हो या आपसे कोई ऐसे या आपसे कोई ऐसी बात करनी हो जो पूरे ऑफिस के सामने नहीं हो सकती. यहाँ पर आपका हफ्ते की शुरुआत ही कॉफ़ी से होती है जो आपका सीनियर आपको ला के देता है. इज़न्ट इट अमेजिंग. और एवरी फ्राइडे आपका हफ्ता खत्म होता है वाइन सेशंस के साथ. दिस वॉज एक वर्किंग कल्चर में इतना कैजुअल होना अपने कॉलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट देन वर्किंग स्टाइल ऑफ इंडिया. इट केम एज अ शॉक टू मी बिकॉज आई वॉज न्यू हियर एजेस अगो. बट येस आई लव्ड इट. यू आर लिसनिंग टू रेडियो साउथलैंड 96.4 FM. I'm your host Ramya and the show is Namaste Southland.

There are jobs I could take up just to survive. अगर आप स्टूडेंट पाथवे से आए हो या फिर आप किसी वर्क टू रेजिडेंसी या स्ट्रगलिंग पाथवे से जैसे अगर आप आए हो तो आपको पता है आपको कैसी जॉब्स करनी पड़ती हैं. दे आर पीपल हु गो टू फार्म जिन्होंने कभी फार्म में काम नहीं किया होगा. क्लीनिंग जॉब्स करनी पड़ती हैं, नाइट फिल असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ती है, फैक्ट्री में काम करने पड़ते हैं, हैवी मशीन्स को डील करना पड़ता है, ओवर ड्राइव्स करनी पड़ती हैं, इवन बिसाइड्स हैविंग ह्यूज क्वालिफिकेशंस बैक इन इंडिया. एंड इट्स द हार्ड फैक्ट, डिग्री साइड पर रखनी पड़ती है, अपनी ईगो भी और कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी साइड पर रखनी पड़ती है. बट स्लोली व्हेन यू गेट सेटल डाउन लाइफ इम्प्रूव्स. आई थिंक वो स्ट्रगल हर एक की लाइफ में आता है. बट यू नो वॉट, वर्किंग इन न्यूजीलैंड इज क्वाइट डिफरेंट देन सम वर्किंग कंडीशंस बैक इन आर होम कंट्री. आई नो इंडिया में सिक लीव लेना इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. इफ यू वर्क इन इंडिया यू वुड नो दैट यू हैव टू गो टू ऑफिस अनलेस यू आर डाइंग, जस्ट एन एग्जाम्पल. बट यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले दे आर लाइक टेक योर माइट, अपनी हेल्थ का पहले ख्याल करो और फिर आओ. नहीं तो इट्स

Okay, you have sick days, you have annual leaves, you can work extra and take additional leaves. It's definitely, the working style is way different and way better in New Zealand. And what has been the biggest lesson of working in New Zealand? Confidence matters, communications matters, networking matters. Your work ethic does matter. अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं भी आती एक पल को, पर आप काम करने के में बहुत अच्छे हो, ये आपकी इज्जत करते हैं। आपकी बहुत इज्जत होगी इफ यू कैन प्रूव दैट यू हैव अ गुड वर्क एथिक। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेटवर्किंग कैन टेक यू प्लेसेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। इफ दे आस्क यू फॉर रेफरेंसेस, यू नो अपने नेटवर्क में से आप किसका नाम दे सकते हो रिलायबली, जो आपको लेट डाउन नहीं करेगा। इस कंट्री में अगर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, आपको वो रेफरेंसेस, वो नेटवर्क चाहिए। एंड समवेयर इट बिकम्स योर कुशन एज वेल। आपका कम्युनिटी आपका नेटवर्क बन जाती है, आपका वर्क प्लेस आपका नेटवर्क बन जाता है। जो आप सोशली करते हो जाके, इफ़ यू प्ले बैडमिंटन, यू गो फॉर स्विमिंग, यू टेक योर किड्स फॉर म्यूजिक लेसन, उनके पेरेंट्स आपका नेटवर्क बन जाते हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर विद अ नेक्स्ट सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो साउथलैंड 96.4 FM। मैं हूँ रविया और शो का नाम है नमस्ते साउथलैंड।